0: Dar san shirang ayi tat panang shin tik rim sana zats nga ji akashwani ilani chut sanga to chu chu tur kya chadu kasata akashwani dilani samajar pa phat yang testing ne morning news sana zat
1: beta main kal apne bhatije ke ghar hoke aaya dekhkar hairan reh gaya ki wo log din bhar ac chalate hain roz washing machine chalate hain ghar mein do do fridge hain फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है जीरो मैंने पूछा तो भतीजा बोला चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर
3: हर घर सूर्य घर
4: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है
4: दोनों पक्षों ने कृषि महत्वपूर्ण खनिजों आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी बंदरगाहों के आधुनिकीकरण लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे वैश्विक

0: चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताज़ा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
5: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताज़ा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने

0: तो टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट आपका और कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है, और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी। प्रियंका
1: जी जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
2: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4th और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद प्रियंका। AI से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के पांच देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
4: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent, and affordable innovation. The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
6: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
5: More from our correspondent.
7: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by a series of significant

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनम स्तुप के स्तंग नमगेल टिंग इसके सलकने ई लू बांग सनजरत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सोनम स्तुपगिस्तंग नमगेल तशी इंगिस के सल के ने यंग लोजिकांग सनाजात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पद्मा डुलकरतांग सिरिंग नोरजुमनीस के सेल कने ई लोबांग सनाजात।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कसता लता मंगेशकर तमो केश निस्कने आह फ्लेमिलो सनाचत लोरसुमकन हसर जयपुरी यंग लुयांसिकन शंकर जय किशन।
4: पीछे भाग रहा हूँ मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फिल्मिलु डिग्री मेना कसता अनोखी अदा फिल्मिलु उमा देवी ने सनाजत लूर सुमकन शकील यांग लुयांग श्रीकन नौशाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनाधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्ट मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनः मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और कांचीपुरम विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह लगभग इसी समय लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सरकार को कांग्रेस के 5 विधायक, वीसीके, आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीआईएम के 2-2 विधायक और एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके गुट के 22 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani,
1: the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering, and terror financing. India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Prime Minister Modi today said that India has been a sacred land of spiritual practice and worship, as well as courage, strength and all welfare. Sharing a Sanskrit quote in a social media post, Mr. Modi wished that this sacred land of great heritage and ancient culture always keeps everyone full of happiness and prosperity. Prime Minister Narendra Modi, sharing a social media post, has paid tributes to former Prime Minister Rajiv Gandhi on his death anniversary. India has called out Pakistan's long-tainted record of genocidal at the United Nations Security Council. Speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday, India's permanent representative to the UN ambassador P. Harish said that Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said it is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social media platforms including Meta, Google and Telegram yesterday, raising serious concerns over the growing spread of misinformation related to competitive examinations, particularly through Telegram channels and anonymous online groups. The meeting was crucial ahead of the re-examination of NEET UG 2026 on 21st of June. The first session of the 16th Assam Legislative Assembly will begin today and will have four sittings on May 21st, 22nd, 25th and 26th. The proceedings of the House on the opening day will begin with the announcement of the pro-term speaker. The Governor of Assam has appointed senior BJP MLA Chandramohan Patwari as the pro-term speaker. Mr. Patwari will administer the oath to the newly elected members of the House. Later in the day, the election for a full-time speaker will also be held. Meanwhile, the State Cabinet approved the proposed Uniform Civil Code Bill during its first sitting. Chief Minister Himanta Biswa Sarma yesterday said that the Uniform Civil Code Bill will be introduced and passed during the ongoing Assembly session. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay will expand his cabinet today. Rajesh Kumar, leader of Congress Legislature Party, and P. Vishwanath Melur MLA will be inducted into the cabinet. This is the first time after 1967 that the Congress members will join the state cabinet. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that he is looking forward to celebrating America's 250th birthday with partners in India. In a video message shared ahead of his visit, Mr. Rubio said that India is the world's largest democracy and U.S. is world's oldest, so the U.S. look forward to celebrating it together. U.S. Embassy in India also shared the video. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already qualified for the playoffs, while the Chennai Super Kings are eyeing for the fourth spot in the points table. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar.
0: आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी की निंदा की, कहा पाकिस्तान का अमानवीय व्यवहार उसकी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने का प्रयास। और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा वे इस वर्ष भारत के साथ अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर्ज से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाज, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। सुश्री मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वह भारत में अपने साझेदारों के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया।
4: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की चार दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। मुंबई हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की यात्रा भारत साइप्रस साझेदारी की बढ़ती गति को दर्शाती है। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। आधिकारिक बयान के अनुसार शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी की निंदा की है। सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर कल आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय व्यवहार उसकी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने का प्रयास है। श्री पर्वतनेनी ने पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने इस वर्ष के पहले 3 महीनों में पाकिस्तान सैन्य बलों द्वारा की गई सीमा पार सशस्त्र हिंसा के कारण 750 नागरिकों की मौत और घायल होने की घटनाओं को दर्ज किया है। इनमें से अधिकांश हवाई हमलों के परिणाम स्वरूप हुई है। अमरीका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमरीकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरान के बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमरीका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकेबंदी लागू की थी। इसके बाद से अब तक 91 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला जा चुका है, जबकि 4 जहाजों को रोका गया है। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर नए सैन्य हमले टालकर बातचीत का मौका देने की बात कही थी, लेकिन समुद्र में कार्रवाई जारी है। अमरीका का कहना है कि इस नाकेबंदी से ईरान को रोज करीब $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 2 मालवाहक जहाजों को कब्जे में ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा युगोस्लाविया के विघटन और रवांडा नरसंहार के मामलों की सुनवाई के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की अंतिम कार्यवाही पूरी हो गई है। अंतिम सुनवाई में रवांडा नरसंहार के कथित वित्त पोषक फेलिसियन काबुगा से जुड़ी कार्यवाही औपचारिक रूप से बंद कर दी गई। काबुगा का शनिवार को निधन हो गया था। दोनों न्यायाधिकरणों ने अत्याचार और नरसंहार से जुड़े 155 लोगों को दोषी ठहराया। इन अदालतों ने वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा और किसानों तथा मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे।

एक बार देख लें तो भूल नहीं सकते हैं, और यही कमाल है हमारे चैनल का भी, क्योंकि इस पर ऐसे ही दौर के गाने बजते हैं जिन्हें भूला नहीं जा सकता कभी भी। 50s, 60s, 70s क्या गाने बनते थे। चलिए एक और गाना सुन लेते हैं। और ये जो आवाज है ना, ये भी बहुत ही प्यारी आवाज, इतनी शांत सी आवाज लगती है ना, मुझे तो बहुत ही पसंद है। हेमंदा की आवाज, हेमंत कुमार, उन्हीं की फिल्म है और उन्हीं की फिल्म का गाना है, उन्हीं की आवाज में गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, वामिका वाणी, इन सब की फरमाइश पर 20 साल बाद।

एक और आवाज जो अपने गानों में परफेक्शन के लिए जानी जाती है, मन्ना डे साहब की, उन्हीं का गाना अब मैं आपको सुनवाने वाली हूँ। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, मेघा मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, राहुल खुराना की फरमाइश पर। और ये जो गाना है ना, कव्वाली है एक्चुअली, और ये कव्वाली मतलब यादगार है, सदाबहार है, और आवाज तो खैर माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही परफेक्ट मैच्योर वॉइस।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

स्वादिष्ट लवेक आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है दिल का मेल बॉक्स। मैं हूँ नीतू आपके साथ और अगला गाना भी आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा गाना है। इस गाने की फरमाइश सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, इन सभी ने मिलकर भेजी है। फिल्म है जिद्दी और गाना आशा पारिख पर पिक्चराइज्ड है। बहुत प्यारा सा गाना लता मंगेशकर की आवाज में, आइए आनंद उठाते हैं हम सब मिलकर। आप भी अगर अपनी पसंद का कोई गाना सुनना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं अपनी पसंद FM Gold AIR Delhi @gmail.com पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
0: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ये है दिल का मेल बॉक्स। नीतू के साथ सुन रहे हैं आप आकाशवाणी FM गोल्ड पर। बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश सुनना चाहते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना दो बदन फिल्म से। हालांकि इन दिनों अगर हम दिल्ली में देखें ना तो कहीं भी ठंडी हवा नहीं चल रही है, लेकिन ठीक है, इमेजिन तो कर ही सकते हैं ना। इमेजिन करेंगे तो जरा गर्मी कम लगेगी, लू के थपेड़े महसूस नहीं होंगे। तो गाने को एंजॉय करके इमेजिन करिए आप भी।

यादों का तो ऐसा है, कभी भी आ सकती हैं और कभी भी वो यादें आपको हंसा भी सकती हैं, रुला भी सकती हैं। तो इन यादों का जो सिलसिला है ना, वो एक अलग तरह का है। काम करते हुए उसको जरा दूर रखते हैं, गाने सुनते हैं। और ये आखिरी गाना है इस प्रोग्राम का, आकाश दीप फिल्म से सुनना चाहा है फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा ने। और इसी के साथ नीतू आपसे इजाजत चाहती है, आप इस गाने का आनंद उठाइए। मैं तस्वीर में आपसे मिलती हूँ 11:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में आज मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार में 23 मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। इनमें 3 नई महिला मंत्री भी शामिल हैं। सरकार में पहले से ही 9 मंत्री हैं, जिनमें एक महिला मंत्री सुश्री कीर्तना भी शामिल हैं। अब कैबिनेट में कुल 32 मंत्री हो जाएंगे, जिनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी शामिल हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर चेन्नई के लोकभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 627 अंक की उछाल के साथ 75,945, जबकि निफ्टी 200 अंक बढ़कर 23,859 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said, the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. India has called out Pakistan's long-tainted record of genocidal acts at the United Nations Security Council. Speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, said that Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said it is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India.
3: It is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
2: Union Health Minister J.P. Nadda said that India has undertaken one of the world's largest screening and early detection efforts to eliminate tuberculosis under the National Tuberculosis Elimination Programme. Mr. Nadda said this while addressing an event on ministerial perspectives on lung health screening during the 79th session of the World Health Assembly in Geneva. He underlined that the country has expanded active case finding among vulnerable populations through house-to-house outreach, mobile screening teams, community campaigns and focused drives in high-risk areas. Prime Minister Modi today said that India has been a sacred land of spiritual practice and worship, as well as courage, strength and all welfare. Sharing a Sanskrit quote in a social media post, Mr. Modi wished that this sacred land of great heritage and ancient culture always keeps everyone full of happiness and prosperity. The West Bengal government has announced that Vande Mataram will now be compulsory as the prayer song in all madrasas. The Madrasa Education Department has issued a directive stating that from now on, students in institutions under the Minority Affairs and Madrasa Education Department must sing Vande Mataram before the start of classes, replacing earlier guidelines and practices. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social media platforms including Meta, Google and Telegram yesterday, raising serious concerns over the growing spread of misinformation related to competitive exams, particularly through Telegram channels and anonymous online groups. The meeting was crucial ahead of the re-examination of NEET UG 2026 on 21st of June. Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari reviewed the quality and maintenance progress of various highways of Tripura, Arunachal Pradesh and Sikkim in New Delhi. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already qualified for the playoffs. And Indian equity markets traded higher today in early deals amid hopes of easing tensions in West Asia after Iran said it was reviewing latest proposal to end the conflict. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। नीतू है आपके साथ और ये है तस्वीर, जिसमें हम बात करते हैं अपने ही देश की कुछ ऐसी जगहों की जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारी हैं और जहां जाने का अगर आपका कहीं घूमने का मन है तो आप वहां जा सकते हैं। अब होता क्या है ना कि अक्सर लोग बातें तो कर लेते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी कर लेते हैं रील्स भेज भेज के, लेकिन अक्सर जाना नहीं हो पाता। और होता ये भी है कि आप जब उन जगहों के बारे में देखते हैं सुनते हैं तो बड़ा ही आपको लगता है यार इतनी अच्छी अच्छी जगह है हमारे देश में, हम जा ही नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि कम सुने हुए होते हैं, तो आज जिस जगह की बात मैं करने जा रही हूं ना, ये नाम भी आपने शायद बहुत कम सुना होगा। ये है ओडिशा का कश्मीर, यानी इसे ओडिशा का कश्मीर कहा जाता है और ये ओडिशा के कंधमाल जिले में बसा है दारिंगबाड़ी। ये छोटा सा हिल स्टेशन है, समुद्र तल से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। ठंडी हवाओं, धुंध भरे जंगलों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। एक ऐसा ठिकाना जहां कुदरत अपने सबसे कोमल रूप में दिखाई देती है।

नज़ारे तो वाकई देखने लायक होते हैं। आप कहीं बाहर चले जाएं पहाड़ों पर तो बहुत ही एक से बढ़कर एक नज़ारे आपको मिलते हैं, और दारिंगबाड़ी भी ऐसी ही गिनी चुनी जगहों में से है, खासतौर पर ओडिशा की गिनी चुनी जगहों में से है, जहां सर्दियों में तापमान 0 डिग्री के आसपास चला जाता है और कभी कभी तो फ्रॉस्ट भी देखने को मिलता है, यानी पाला पड़ता है वहां पर, जो कि ओडिशा में बहुत ही रेयर है। ओडिशा में पाइन ट्री भी कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन दारिंगबाड़ी में पाइन का खूबसूरत जंगल है जिसे देखते ही वो जो हिल स्टेशन वाली फीलिंग है ना वो आ जाती है। और पहाड़ हो, पहाड़ का गांव हो ना स्पेशली, तो बस ऐसा करता है दिल कि वहां से वापस ही ना आया जाए। कोई बात नहीं, वो तो मौका भी आएगा जब आप वहां जाएंगे और बसेंगे, लेकिन फिलहाल

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, और आज हम बातें कर रहे हैं ओडिशा के हिल स्टेशन दारिंगबाड़ी की। आप वहां जाएंगे ना तो बटरफ्लाई पार्क और खूबसूरत नेचर पार्क में घूमने का मौका बिल्कुल मत गंवाइएगा। नेचर के साथ नेचर के बीच में ये वॉक आपको हमेशा याद रहेगी। हिल व्यू पार्क, डोलुरी नदी तो बस ऐसे हैं कि आपको वहीं थाम के रख लेंगे, आपका हिलने का मन नहीं करेगा। और यहाँ के हिल व्यू पॉइंट से आपको दिख सकता है सूर्योदय और बादलों का मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा। आप जाके तो देखिए, कोशिश ये होती है कि आप जाएंगे तभी आपको ये सब दिखेगा, नहीं जाएंगे तो सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। या फिर गाने सुनिए, गाने सुन के एंजॉय कीजिए।

नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरविंदर मांकड़, एक राइटर, एक कार्टूनिस्ट और फिल्म डायरेक्टर। आप मुझे मेरे करेक्टर मोटू पतलू से अच्छी तरह जानते होंगे। पिछले 50 साल से मैं उसे लिख रहा हूं और ड्रा भी कर रहा हूं और टीवी पे भी आ रहे हैं। संपत चंपत, शेख चिल्ली और ना जाने ऐसे 500 करेक्टर्स आप सबके मोहब्बत और प्यार से इस दुनिया में मशहूर हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आकाशवाणी के बारे में। जी हाँ, मेरा बचपन जिसके साथ बीता, आज 90 साल हो गए हैं आकाशवाणी अपना 90 वर्षगांठ मनाने जा रही है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरे घर में एक रेडियो हुआ करता था, उसके अंदर एक प्लास्टिक की तार जैसी एक लाइन होती थी और एक गोल स्विच होता था जिसको हम मैनुअल घुमाते थे और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को पकड़ता था। लेकिन मुझे आकाशवाणी की जो सबसे सुंदर लगती थी, सुबह सुबह की जो सिग्नेचर ट्यून आती थी सबसे पहले, स्टार्ट होने से पहले, यकीन माने कि मैंने एक एक प्रोग्राम को नोट किया हुआ था, जैसे कि 9 बजे ये आएगा, 6 बजे ये आएगा। मुझे आज तक याद है कि 9 बजे हवा महल आया करता था, 7 बजे फौजी भाइयों का फरमाइशी प्रोग्राम आता था, चित्रमाला आता था और इसके

के अलावा बहुत सारे और बच्चों के कार्यक्रम, बड़ों के कार्यक्रम, विविध भारती का अपना एक अलग मजा था, क्योंकि टीवी होता नहीं था, रेडियो एकमात्र साधन था। तो एक ट्रांजिस्टर मेरे पापा ने मेरे को लेके दिया था, जो मैं रात को हवा महल जिस पे सुना करता था। समय बीता, मुझे याद है ये 1977 की बात है, मैं 12 या 13 साल का था। तो उस समय धर्मवीर फिल्म रिलीज हुई थी मनमोहन देसाई की, और जहां तक मुझे लगता है पहला स्पॉन्सर्ड सॉन्ग, प्रायोजित गाना रोज सुबह 9:30 के आसपास बजता था मोहम्मद रफी की आवाज में, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। तो मैं कहीं भी खेल रहा होता था, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम होता था कि अब 9:30 हो गए, मैं भागता हुआ घर आता था और मोहम्मद रफी साहब का वो गीत, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, ये सुना करता था। इतना पसंद था मुझे। और बहुत सारे किस्से आकाशवाणी के साथ मेरे, हर दम रेडियो का दीवाना हुआ करता था मैं। बेशक आज टीवी आ गया है, बेशक आज बहुत कुछ आ गया, मगर आज भी मेरी जो पसंद है वो विविध भारती होता है या आकाशवाणी का गोल्ड होता है, क्योंकि पुराने गाने बजाते हैं, संस्कारी गाने बजाते हैं, और बेहतरीन ढंग से इसमें परिभाषा से बोला जाता है, कोई उलझुल नहीं बोलते, पब्लिक को एक अच्छा संदेश देते हैं। तो मैं हमेशा कहूँगा आकाशवाणी, अभी तो 100 साल आएंगे, आप 100वीं वर्षगांठ मनाएं, फिर 1000वीं मनवाएं, खूब रहे आकाशवाणी, जैसा कोई हो नहीं सकता। आई लव यू आकाशवाणी, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission, information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit, samriddh Bharat.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

104.9 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप। तस्वीर सुन रहे हैं और तस्वीर में हम बातें कर रहे हैं ओडिशा के हिल स्टेशन दारिंगबाड़ी की, जहां के कॉफी गार्डन और काली मिर्च की खेती इस जगह को एकदम अलग पहचान देते हैं। बेलगढ़ सेंचुरी में आप वन्य जीव देख सकते हैं और घने जंगल तो आपको देखने को मिलेंगे ही, कॉफी गार्डन्स भी देखने को मिलेंगे। हरियाली के बीच फैले हुए ये बागान आपको सुगंधी से भर देते हैं। दारिंगबाड़ी और उसके आसपास का इलाका पूर्वी घाटों के बीच

आप जब ऐसी जगहों पर घूमने जाते हैं ना, तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, तो सबके एक जैसे एक्सपीरियंसेस नहीं हो सकते। और दारिंगबाड़ी की बात कर रहे हैं जो कि बहुत थोड़ा कम जाना पहचाना पहचानी जगह है, तो अगर आप वहां जाते हैं तो फिर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। दारिंगबाड़ी की बात है तो इसका जो नाम है वो एक ब्रिटिश अधिकारी डेरिंग साहब के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस क्षेत्र को विकसित किया था। दारिंगबाड़ी अपनी ऑर्गेनिक खेती के लिए भी जानी जाती है, खासकर जीआई टैग वाली कंधमाल हल्दी, जो बेहतरीन क्वालिटी की हल्दी मानी जाती है, और अदरक की पैदावार, उसके लिए भी दारिंगबाड़ी जाना जाता है। दारिंगबाड़ी के आसपास के जंगलों में कुटिया कोंध जंद जाति के जो लोग हैं वो रहते हैं, जो भारत के सबसे पुराने आदिवासी समुदायों में से एक हैं। स्थानीय जनजातियां अपनी पारंपरिक संस्कृति और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं, तो जब आप वहां जाएंगे तो उस जगह के हस्तशिल्प से रूबरू होइएगा, अच्छे से जानिएगा, करीब से, क्योंकि हर जगह की अपनी एक खासियत होती है, तो उस खासियत

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

104.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ ये है तस्वीर, और तस्वीर में आज हमने बातें की दारिंगबाड़ी की, जो कि ओडिशा में है। ओडिशा का हिल स्टेशन है और यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय ठंडा मौसम ही होता है हिल स्टेशन जाने के लिए, अक्टूबर से मार्च तक का। और उसमें भी अगर आप फ्रॉस्ट का अनुभव करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं पाला पड़ते हुए वो कैसा लगता है, वो उस जगह पर कैसा महसूस होता है, तो खास तौर पर दिसंबर जनवरी के महीनों में जाइएगा। सर्दियों की सुबह यहाँ इतनी ठंडी होती है कि घास और पत्तों पर बर्फ जैसी परत जम जाती है। दारिंगबाड़ी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और नजदीकी रेलवे स्टेशन है ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन। भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और फुलवनी से बस या टैक्सी लेकर आप पहुंच सकते हैं दारिंगबाड़ी।

आने का नहीं, अब तो जाने का समय हो गया है। हाँ, कोई दूसरा आएगा लेकिन मुझे जाना होगा। तो नीतू चलती है, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, क्योंकि अभी बहुत कुछ है सुनने के लिए। अभी मैं आपके लिए एक और गाना छोड़े जा रही हूँ, शशि कपूर पर पिक्चराइज गाना है और फिल्म है प्यार का मौसम। आप इसका आनंद उठाइए और नीतू को इजाजत दीजिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.

दक्षिण जरंगे शान्य सलखने प्यार में कभी कभी फिल्म लो सनाजात ये फिल्म लोगुन संखलन गसला आकाशवाणी लेने संचसला फुलेंजिक तंगिन।

लुसलकन कमल खान लुरसुमखन समीर यंग लुयंगश्रीकन जतिन ललित कसता प्यार किया तो डरना क्या फिल्मिलो सनाजात।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: सबंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
0: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
0: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
0: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
0: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
0: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी,
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
0: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
2: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: जी,
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
2: जी,
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
2: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
2: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं, यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
2: इसीलिए शोलावनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
2: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।

0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: प्यार से रहते हो। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
1: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगा कर सुनो सुनो, कान लगा कर सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो

0: और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर।

0: भाई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
5: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
6: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
7: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
6: हाँ,
7: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
6: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
7: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
6: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़, इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
7: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काट।
8: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
7: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
5: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
9: रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
6: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
7: हाँ अटकू, चल आगे चलते हैं।
5: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
7: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
6: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
5: वो उसे काटने लगे।
8: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।

0: अच्छा
1: ठीक है,
2: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
3: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
4: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
2: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
3: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
5: अरे वाह अटकू मटकू,
3: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
0: पेड़ हमारे
2: दोस्त हैं।
0: जीवन में हरियाली लाओ,
2: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
6: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग, उमंग।
9: ndaksangi jerangi NCERT chindakzat kane degrim umange khap chikstongi pyagya chuger gu pa sanajats ngaji akashwani lene juinjik tangin ngime chutzot achik chaduk kasata akashwani delline hindi tang angrezena nasul sanajat

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओ यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर

0: सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. India has called out Pakistan's long-tended record of genocide at the United Nations Security Council, speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday. India's permanent representative to the UN, Ambassador P. Harish, said Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said it is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India.
2: It is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
1: Defence Minister Rajnath Singh and Minister of Peace.

जय हिंद फौजी भाइयों, इस वक्त के कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में धूम टू फिल्म से इस गीत को। गीतकार है समीर और संगीतकार है प्रीतम।

लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम में अगला गीत सोनू निगम की आवाज़ में कल हो ना हो फिल्म से। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं मोहित चौहान को जब वी मेट फिल्म में। इरशाद कलमी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी आप सुन रहे थे डेलेसिक्स फिल्म से गीत मोहित चौहान की आवाज़ में। अगला गीत लीजिए सुनिए मोहब्बतें फिल्म से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है जतिन ललित।

अभी आपने सुना गजनी फिल्म से गीत जावेद अली और सोनू निगम की आवाज़ों में। फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम के अंत में फौजी भाइयों सुनेंगे अलका याग्निक और शान की आवाज़ में हम तुम फिल्म से इस गीत को। परसों जोशी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

इस गीत के साथ फौजी भाइयों, वक्त हो चला है आप लोगों से विदा लेने का। हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।

0: forces, most of which occur due to airstrikes, it is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
1: In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already secured a place in the playoffs, while Chennai Super Kings will be looking to strengthen their chances for the fourth spot in the points table. Meanwhile, Kolkata Knight Riders kept their playoff hopes alive with a 4-wicket victory over Mumbai Indians at the Eden Gardens in Kolkata last night. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heatwave to severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. An orange colour warning for heatwave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heatwave conditions are also expected over Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को

0: मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: It is ironic that Pakistan, with its long time,
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: India has recently launched
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
4: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की

0: प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
4: चाय, ये चाय।
5: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज की फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात

0: कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव किलोहर्ट्ज़ चिक्सोंग अपचुंगसुम यंग ना मीटर्स निबेग्या चुग्याब्जितांग शुजुरगु यंग एफएम मेगाहर्ट्ज़ ग्यानांग चिक्तांग शुजुर चिगेका नजे आकाशवाणी लेने जुइनजिक्तांगिन निमे छुचोत निस्तांग पेचादुक कासाता निस्तांग स्कारमांग अपचुंगांगा छुकपा लदाख से लुरिक सांचेस लाभ होलेन इना छांगमे संस्मुल्ला छिरिंग नुरबी सलकानी लुरिक सानाजात।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मतगणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission, information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit, samriddh Bharat.

0: 간파 라나 간파 송 데네
1: 치미고나
0: 아바마 아비메메
1: 디스
0: 오 치미구나 디스디옹 데네 스카르메스콜라 치 유즈즈 바상 데네 스팅마작 보고네 마네 마네 마 장마 저치 두글 즈르기 말 데모 그냥 소리 데모 같이 일루 경도 같이 다 띠용하다 제나 띠용하다 아슬리 트레디셔널 놀레지 보두게 알까
1: 몰래
0: 왔다 이우 투구나 디마티스 비나 갔다 아비메메레 구나 까이 바타요 코네 띠오 삼띵 갸끼 이 당디니 투구네 당디니 레티스 에듀케이션 보조로 코네 놀레지 보마네 띠오 시바 다음이로 그랬대 코네 띠오 삼띠 둑스네 띠도
1: 그래서
0: 다 디니 잡어 이 투구네 띠에요스 바상 테네 아비메메 구나 타데 코네 몰데 몰도 가야 송 바상 테마네 코네 띠오 삼띠 둑 nge thugu nang nge chao chama nge spera gu ning mane chang kontang me dan rin me chong basang ta nga ta nam tie chik pone tene nga ta oi traditional knowledge pa pata charuk le ki nga ta cham shik nga ta skarma na po nga ta delte yo to tene te nga ta part of life ka zo en ta mi ma nga ta tin chana le ane nga ta skarma gu na khachi git pu thong du khachi nga ta dos ina josa tene o to mindu mindu gu le pya story de mon de mos kya ando ta mala ka nga ti life
1: Sure,
0: hai
1: pala,
0: oh, no.
1: clear.
0: बिल्कुल रू यो क्या इने गाता इना दांग जिंगे नक्षिक गसन जोडी कल लाइट आ गते गाता टीना स्कायो ज दुख ओ तो संगमा मन दुख दुख बंगाता गाल लंगाता पादा मिछा जस मरता इउ गाता गजे तेउ कोशिश इन कि चम सिंग न इउ गाता चम अबिले मेमेल संग में कर थिंग्स दे डॉक्यूमेंट जस ना तेउ गाता स्ट्रोचन ते माने कों का तो मेदा जिक बने गाता पूरा स्टोशन तो गाउ चलक बंगाता लूर गया जं लू निपिया लू सुम गया जिपिया गबगा गाता स्टेंडिंग स्टेंडिंग का मन मिंडा स्कैन लॉक स्टेंडर का बोला तेने ओ दे जाला को मा इंटरेस्टिंग यो त्यों आजे लेमोजिक रिजल्ट ची जोस्ते चांगमेल दुना पिंचेसिन ते भी आजे सुंदर सुन
1: मा गैस वाले ते मा छमा चाहिए शु संग दुन बा ते स्कूल ला या रे ते और ते स्कूल ला ते ची फो ngata na yong nang ya audio for the chicken video for the jeong na changma ka ngata smyam simet te uni ma ngasta ngin ta do de do ma ngyan ngin do te ni shes ngin do lal ta yang chik chik ngi ra da si mi hun na dan ale pa nang na po chi da pi jo chi ngam po te ni ale na la drug sky zen ji ngata ya ga na go ma rong du ga ja te no pa ka bo ge te te ni ngata skoryang sina yar ga sta nga ja te no pa te ni ngata te thok pi na skoryang pa ma mong po ji ngata mixal ja te ngata han le ya skarma zik sa skyo din ji no skarma skola stak cha ja ja so sta ngata skarma ge te se na ja ja no pa da le ये स्कॉलर शिक्षा दादा
0: मैं मानता हूं ना बिल्कुल ले तंगाता ये हाल ले डांस का रिजर्व आता चिक जो पसंद तंगाता सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिस पसंद ओदे टू निशुर तभी ये मैं ट्रेनिंग डांस ले तेने ngal la chi chat pin de na mi thang ma te o azu sambang du ikane mane telescope chen mo jik du ta mane nga ta pakka ka zu hang ni sten de kan du so le nga ji ka you hanle dark sky reserve छा संगल्ला या तरुंग मिमंग पो तरुंग दियो संबा दु आ टेलीस्कोप म छन मेक दु ने मगर नजे टेलीस्कोप प छमा साइंटिफिक रिसर्च फि यानो माने पत स्कर मे स्ट्रक्चर जत नजा रा दिंग छु पे ओते ना थों मिशस हालंकि नजा का लास चोका नो नजा स्टेटस करंग माने चंग मे तेने दियो जों बजा मी थमा नजा तासते गडी लाइट गुते म नजा लाइट पोल्यूशन म पो यों दु पिन याले तेने नजा गस तेने नजा ये हनले डास का रिजर्व ना ओ द टू इशू सब सबजिया गदा टेलीस्कोप डांस तेने कोना लैब्स खोना गाता मिंग लेमिक डांस एस्ट्रोनॉमी एम्बेसडर काउस कार्मेस कोला खोने रिप्रेजेंट जत सोंबासंग तेने रिप्रेजेंट जत पसंग तेने तंगाती कार्मेस कोला ची यो ना स्टार्स यो ना स्टंचेस इन ना लोगिस इन ना स्टोरी लेमो दम ना खोने टूरिस्ट बुना चाहो तेने टूरिस्ट बुने एंटरटेन ना सो जे जा निमा खोन जगाल देमो देमो उमलिंग ला छियो बांगो आजो पितोक बुन कोना चितो तो मचो ना ओ तो स्टार गेजिंग ना स्टोरी ओर देमो जसे साते मता एस्ट्रो टूरिज्म बो मो बेनिफिट
1: कसले टेस्टिंग जो पिका टीवा टी ना काले याले मता लदा सिना गास कोरियन सिस मता मिस कोरियन पागोला जिक्षे सिपिया मता ता गोनपा माने मानता तमा मंग पोत के खशेजी गिजिक्स का नियोन ना खचिक तंगा ता माउंटेनियरिंग चोस्यो दनो खचिक ना दा दसी साइड सिंह का चिक ट्रेकिंग चॉइस करो तेरे तंग ये थोड़ी चीज़ रंगना फला ना दादा से एस्टो टूरिज्म बुमा सुनाले ते ओ त्या दादा ये जो कैलेंडर रिपोर्ट चिगुर दे दाले दायु तेरे स्पोर्ट्स पर उन त्यों स्टेशन और पर ये जाक बोला ये तू सब पिनांगा तेरे एस्टो टूरिज्म दो ते कांगा ये
0: व्यवस्थायों हफ्ता जी भिया लद्दाख एस्ट्रो वीक फेस्टिवल दस्ती हो दिया कहूंगे तालो मैं 20 नहीं 26 पे नता है

दर्शनी चरण या अजनबी फिल्म लो लता मंगेशकर तंग किशोर कुमार ने सनेतत लोरसोम कनिन पिन नानिन बख्शी और लोयोस्टिक कनिन पिन आर डी बर्मन कसता फिल्म लो डिक्रमे सिंह जुप्पिका किशोर कुमार तंग अमित खन्ने सेल खनिलो चलते चलते फिल्म ने संचिस लफलन अमित खन्ने सुमजत खनिलुआ यंगस्टिक अजत खन बप्पी लहरी।

0: tapsara dering sani chotsot gyadika pomogone dikrim pomi jiksten sanajadin e dikrim nangas ngonla international biological diversity day thoga tamdil ya ina dikrim nangas kujabs riksinda watang yam poti vatilen sanajadin dikrim phulkan gun deje nangmotang jikmediang thul dikrim e kodik satkan sering chorol shkyatang phedeka ngima palki de selkani lurek sanchis lapalin Yandagrim is pesting jupica daring sanichutsot, rudam pedica, put pedigrim, kangrinurbu, sanizadin. E decriminas gunla tamdil. Yangan decriminas gujabs. Gunpo don duptang yampoti vetilenjik sanizadin, decrim pulkan gun. Choki lamutang sonam choki, decrime, codic zatkan, lupsangam gel. Casetangaji torres e decrim tang potang, his pescor gun sanizat. Decrim tampenanga torres natuchutsot, duntans germasum chusokni seca. Skujabs Zebu Nisani Roshni Sanazadin Duntans Kerma Sumchu Subdunika Naji Dikrim Gunis Korgun Tat Panangin Dikrim Sanchez Lapulin Chutsot Duntans Kerma Jipju Jakniseka Inas Mulla Tsiring Dashi Pulkani Sungur Kanis Fatima Tang Topaguni Pulkani Nati Sharif Yang Tat Panangin Dikrim Sting Jupika Stanzin Yangrul Tang Padma Chundule Pulkani Choslu Sanchez Lapulin Jigadika Akashvani Dilini Samacha Prabhatang Morning News Chutzor Gyatang Pedika Gyalchas Bakula Rimboche Skutse Zadnamika Dikrim Sanadzadin. Yantes Tingne Ladakh Silurik Sanchez Lapalin. Rguika Ladakh Sinangana Tsulian Rgudans Karmash Ngeka Lasnes Korla Kyaptaqs. Chutzor Rgudans Karmash Chuyika Mohamed Shafir Elitang Tsering Dolme Selkani Lurik Sanadzadin. Rgudang Pedika Filme Lurik. Akashvani Srinagarne Gonspasalagazad. Akashvani Dillene Shuyika FM Gold Dikrim Gun. Ngeme Chutzor Chukneseka Filme Lurik. NCERT Chindagzat Kani Dikrim Omangi Khaq Stongchik Nang Nibgya Gupchupa Sanazadin Chutso Chugnistang Pedika Chigeka Akashwani Dilli Ni Hindi Tang Angrezi Nangan Natsul Maghmi Kyoktongoni Pia Dikrim Nangan Filme Lurik Sanchez Lapalan Chutso Chiktang Skarmash Chuyika Ngistang Pedika Skunla Sonamang Misal Kani Lu Yang Testing Ne Tseringyur Mittang Topaguni Sel Kani Lurik Sanchez Lapalan Yang Dikrim Tang Pisting Jukpeka Turing Yimi Chutso Ngistang Skarmangab Chungayika Ladak Sinangan Natsul Sanazadin Gasitangaji Torres, Dictrim Yispis Gorgun Juna, Dictrim Yispina Tore, Pito Chutsoshnika, Ladak Sinanganatsul, Shnadans Kermashnika, Nijera Telephone Gutting, Arazet Kani, Filmelu Dictrim, Hello Farmash, Sanatadin, Dictrim Pulkan, Serin Concho, Shnadans Kerman of Chumaika, Naji Dictrim Gunis Gorgun, Akashwani Dilini, Tugeka Hinditang Angrezinanganatsul, Tuktans Kermashuika, Gamil Piscatlun Dictrim, Sanchez Lapalin, and Askunla Tamdil. Yana decriminas kujabs, rexinando tangyampoti vatilin, sanazadin, decrimpulkan, conchoktashi, decrimic codic zatkan, sonamanchok. Tuktans kermajipchuka, mokmi kyoktongoni pia, decrimina, filmelurik, Sanchez Lapalin. Ladaksina natsultan delchet sanazadin chutzot, duntas kermachonika, duntan pedica, sering norzumiselkani lurik, sanazadin. Akashwani, Srinagarni, duntas kermajipchuka, ordinana natsultan tapsara. Toritsani Chutsor Yadaka Junuguni Pia Dikrim Sanchez Lapalin. E. Dikriminas Mulla Tamdil, Yangan Dikriminas Kujabs, Jikmet Mingyurtang Yampoti Vatilenjik Sanizadin. Dikrim Pulkan, Sonam Dulmatang, Rixinamo, Dikrime, Kodik Zatkan, Lobsangam Gel. Jgetang Pedica, Lobsang Choroltang, Topaguni Selkani Lurik, Sanchez Lapalin. Yang Dikrim is Pisting Chupika, Toritsani Chutsot, Rudang Pedica, Chambachundoltang, Topaguni Selkani, Jung Lurik, Sanchez Lapalin. Kasa, Yugunin Pen Gaji, Diring a Dikrim Yispatan Torese, Dikrim Gunis Korgun Gaji Akashwani Leni Shrinjiktain, Pito Chutsod, Tuk Chaduk Kasata Akashwani Dilini, Skunla Hindi, Antestingne, Agrezina Natsul Sanazad
1: Akashwani Samachar Kisat, Mam Mukesh Kumar. भारत और इटली ने व्यापार निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि विन नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The government today reassured that India has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG with refineries operating at optimum capacity to meet the demand. LPG production has been ramped up and every day around 46 to 47,000 tons of LPG are produced in refineries. Addressing an interministerial briefing in New Delhi on the West Asia situation, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said that supply remains stable and steps have been taken to ensure availability across all petrol pumps. Supply of LPG for cooking purposes is stable, and in the last 3 days, delivery of 1.34 crore domestic LPG cylinders has been made, while the supply of commercial LPG remained 1,32,000 tons since 1st of this month. Additional Secretary in the Ministry of Port, Shipping and Waterways, Mukesh Mangal, said they are continuously coordinating with the Ministry of External Affairs, Indian Missions and maritime stakeholders to ensure the safety of seafarers and smooth maritime operations. India and Italy have agreed to further develop the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, to strengthen trade, investment and supply chain resilience. In a joint statement, Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni reaffirmed the commitment to cooperate on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, recognizing its transformational potential in reshaping and promoting global trade, connectivity and prosperity. Appreciating the preliminary discussions around the project, they encouraged the first IMEC ministerial meeting to take concrete steps for advancing this initiative in 2026. Union Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that India has presented a new model to the world by increasing agricultural production, strengthening food security and bringing positive changes in the lives of millions of farmers. Expressing happiness over the conferment of Food and Agriculture Organization, FAO, Agricola Medal to Prime Minister Narendra Modi in Rome, Mr. Chauhan said that this honor is a symbol of the growing prestige of New India. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that India's GDP upgraded from 6.4% to 6.5% in the middle of global crisis, demonstrating the capability of 1.4 billion Indians. Addressing the AmCham's annual leadership summit in New Delhi, the minister said that this achievement reflects the country's growing ability to engage with the world from a position of strength with confidence. Railway Minister Ashwini Vaishnav today held a high-level security review meeting in New Delhi with field officers. During the meeting, it was noted that preliminary investigations into several recent fire incidents in trains have revealed the involvement of anti-social elements. The ministry said that such incidents have been taken up seriously and the Railway Protection Force is actively probing them. The discussions during the security review meeting focused on strengthening intelligence gathering mechanisms from the field through an improved reporting system. Emphasis was also laid on enhancing technology-driven security systems, expanding CCTV coverage across the railway network, and improving operational security. The meeting also highlighted strengthening cyber security, upgrading camera specifications, and deploying AI-based surveillance and monitoring systems. India's call for united global efforts to combat terrorism in all its forms, including cross-border terror. Addressing the 11th annual BRICS Counter-Terrorism Working Group meeting in New Delhi today, Minister of External Affairs Secretary West C.B. George stressed the need to hold accountable those sheltering and supporting terrorism. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
0: Gaji Akashvani Leni Shwinjik Tain, Pito Chutsud, Tuktaskar Mash Chuchadu. Kaseta Jingpesonska Dikram, Sanchez Lapalan, Dikram Pulkan, Hasina Bano, Dikram Ekodik Zatkan, Sonamanchuk.

आइए अगला गीत सुनते हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में दीवाना फिल्म से। इस गीत के बोल हैं समीर के और इसे संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

फौजी भाई के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अगला गीत सुनिए, साधना सरगम की आवाज़ में दिल क्या क्या कसूर फिल्म से। समीर के लिखे इस गीत को धुन से सवारा है नदीम श्रवण ने।

अभी आप सुन रहे थे कोयला फिल्म से गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाज़ों में। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार थे राजेश रोशन। फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी के लय केंद्र से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में लीजिए अगला गीत सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा के आवाज़ों में लव फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को धुन से सवारा है आनंद मिलन ने।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए करीब फिल्म से गीत, कुमार सानू और संजीवनी की आवाज़ों में। गीतकार है राहत इंदौरी और संगीतकार अनु मलिक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Dans ce genre, tu ne peux juste seulement le reconnaître. Quand j'ai accouché, les nez sont chiquetés. Puis tu as tout d'un temps que mes yeux te chatouent. Qu'est-ce que tu as accouché, Fanny? Srinagar ne ordonna pas de sultan. Tapsera sanatad.
1: मुफ्त बिजली योजना, फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: कटरा में अक्षय पात्रा फाउंडेशन की मरकजी बावर्ची सहूलत का संगी बुनियाद रखने के मौके पर उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को मुकवी और मुतवाजन गिजा मिलनी चाहिए। मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारी नौजवान नस्ल का तगजिया हमारे मुस्तकबिल को शक्ल देगा। उन्होंने कहा कि एक भूखा बच्चा सही से पढ़ाई नहीं कर सकता और जो स्कूल अपने बच्चों को अच्छे खिलाता नहीं, दरहकीकत तरक्की के लिए मसावी मौके फराहम नहीं कर सकता। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अक्षय पात्रा की बेलोस खिदमात की सराहना की जो स्कूल गिजाई सेक्टर में दुनिया की बड़ी गैर सरकारी तंजीमों में शामिल है। ये फाउंडेशन अभी 16 रियासतों और 3 यूटीज में 20 लाख से ज्यादा बच्चों को खाना फराहम कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र चौधरी ने आज लंगे जाकर रुकने पार्लियामान इंजीनियर रशीद और मेंबर असेंबली शेख खुर्शीद और उनके दीगर अहलखाना से यकजहती और ताजियत का इजहार किया है। नायब वज़ीर-ए-आला ने उनके मरहूम वालिद की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बाद में जिले के द्रगमुड़ा इलाके में एक पुल का इफ्तिताह करने के मौके पर इस खत्े में राबते आमा को मजबूत करने के लिए सरकार के अजम का इजहार किया। उन्होंने साथ ही ट्रांसपोर्टर्स फेडरेशन और ड्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा के अराकीन से भी बात की और उनके मसायल मुतालबात सुने। इस मौके पर नामा निगारों की तरफ से सिद्धराज जम्मू में बिल्डोजर कार्रवाई के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में नायब वज़ीर-ए-आला ने कहा कि उनकी सरकार लोगों को बसाने के लिए बनी है।
1: लोगों ने पाई पाई जोड़ के मकान बनाए हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि नेशनल कैंपस ने हमेशा लोगों को अशियाना दिया है, आजादी से लेके आज तक पिछला इतिहास देख लीजिए, एक भी एग्जांपल मुझे कोट कर दिए जहां नेशनल कैंपस ने किसी का मकान गिराया हो। इसलिए नेशनल कैंपस हमेशा घर बसाना चाहती है, किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहता।
0: इसी दौरान महकमे ज़राअत और देही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार ने भी मावर लंगे जाकर मरहूम हाजी खेजर मोहम्मद शेख के अहलखाना की ढारस बंधाई। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना एतू ने कहा है कि तिबी शोबे में मजीद इस्तेहकाम लाने और तिबी खिदमात को बेहतर बनाने में तहकीक और इख्तराइयत का रोल अहमियत का हामिल है। वो आज गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम कंक्लेव 2026 का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थी। वजीर मौसूफा ने नौजवान डॉक्टरों और तहकीकदानों से तलकीन की कि वो खिदमत खल्क के लिए खुद को वक्फ करें। वज़ीर-ए-आला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने आज जम्मू में सनती और तिजारती अंजुमनों के नुमाइंदों के साथ जम्मू कश्मीर में सनती सेक्टर से वाबस्ता कई मामलों पर तबादले ख्याल किया। नासिर असलम वानी ने कहा कि सरकार तिजारत के तरीकेकार में आसानी पैदा करने के लिए वादाबंद है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने तालीम और तहकीक नीज सनती शोबे में नुमाया पेशरफ्त हासिल करने पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की है। यूनिवर्सिटी में गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस सेंटर का इफ्तिताह करने के अलावा चीफ सेक्रेटरी ने इदारे के कैंपस 1 और कैंपस 3 का भी दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ इकाइयों का मुआयना करके तालिब इल्मों और अमले के अरकान से बातचीत भी की। खाम तेल की बढ़ती कीमतों और तवानाई की यकीनी फराहमी के खदशात के दरमियान जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने वर्चुअल समातों और कामकाज के हाइब्रिड तरीकेकार अपनाने का ऐलान किया है। रजिस्ट्रार जनरल की जानब से जारी सर्कुलर के मुताबिक ये इकदाम आज से नाफिजुल अमल हो गए हैं और अगले अहकाम तक इनका इतलाक होगा। इधर महकमे तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी रामनिवास शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के स्कूलों या कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का इंतजामिया के पास अभी कोई मंसूबा नहीं है। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: अभी इस तरह का हमने कोई प्लान नहीं किया है क्योंकि हमारे कुछ जगह एग्जाम चल रहे हैं अभी, और अगर ऐसा कुछ हुआ जो भी देश जिस रास्ते पर जा रहा है या जहां कोई भी कभी ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत होगी तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार है, हमारे स्कूल भी हमारे कॉलेजेस भी, बट अभी हमारा कोई इस तरह का फैसला नहीं।
0: जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शांदराबी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान हर शोबे में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। पांपोर में वाकई एक प्राइवेट स्कूल में पंच एक्सलेट चैंपियनशिप 2026 का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि यूटी के नौजवानों ने खेल के मैदान में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है।
3: छोटी छोटी बच्चियां खेल रही है और आज से ही वो अपने आप को जो मुआशरा है इस खेल के जरिए से कितना सेफ कल को महसूस करेगी, वो कितना शार्प रहेगी, उसको इस जमाने से भी डर नहीं लगेगा जो बहुत बाहर लड़कियों के लिए परेशान कुन है। लेकिन ये खेल मजबूत इंसान को बनाता है और यही बच्चियां स्कूल का, देश का और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करती है। ये लड़के कल को ओलंपिक्स में गोल्ड, सिल्वर और बाकी इनामात से जब नवाजे जाते हैं तो हमें फख्र होता है।
0: दरियासना डॉक्टर सईद दरख्शांदराबी ने आज शोपियां में असलुक आलो मौजू से एक तकरीब में शिरकत की।

0: जहां बीजेपी के तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल भी मौजूद थे। आज दहशतगर्दी मुखालिफ दिन है। इस दिन का मकसद नौजवानों को दहशत पसंदी और तशद्दुद से दूर रखना है। आज के दिन दहशत पसंदी की वजह से समाज में पैदा हो रहे मसाइल और इसकी वजह से कौमी मफादात को दरपेश खतरात को उजागर किया जाता है। आज ही के दिन 1991 में साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को दहशत पसंदों ने कत्ल किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। साबिक वजीर आजम अनजहानी राजीव गांधी के यौम शहादत के सिलसिले में आज श्रीनगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अहतमाम से एक तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने राजीव गांधी की सियासी खिदमात को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। कौमी राजधानी नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के बारे में दो रोजा कौमी जायजा इजलास इस अजम के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है कि तमाम रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके इस मिशन के तहत एक साफ सुथरे शहरी भारत के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इस आला सतह के इजलास में तमाम रियासतों और यूटीज के मुतलक वजीरों और सीनियर अफसरों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी महकमे देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार की क्यादत वाले एक वफद ने की। इजलास में ठोस कचरे को ठिकाने लगाने से मुतालिक 2026 के जवाबित और उन पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऐन मुताबिक अमल करने के लिए हिकमत अमलियों पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी के सभी अजला में सिविल और पुलिस इंतजाम के अहतमाम से मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बारे में एक तालिबे इल्म अहसन याकूब ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: नशा एक बहुत बुरी आदत है जो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला बना देता है। इंसान नशा करने से दिमागी और जिस्मानी एतबार से कमजोर हो जाता है और समाज में इसे हकार की नजर से देखा जाता है। दुनिया के हर मजहब ने नशे को गलत करार दिया है और इस पर पाबंदी आयद की है। हमें पुलिस और सिविल सोसाइटी के साथ बयामी ताउन करके इस बदल पर काबू पाना होगा और ऐसे लोगों की सही रहनुमाई भी करनी होगी ताकि ऐसे लोग सही ट्रैक पर आ जाए।
0: इधर पुलिस की नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की सरगर्मियों के तहत की गई मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बारामुल्ला, अनंतनाग और कुलगाम में अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 6 स्मगलरों को गिरफ्तार करके मनुष्यात की एक बड़ी मिकदार जब्त की गई है। इस दौरान बारामुल्ला में पुलिस की तरफ से एक मनुष्यात मुखालिफ रैली और एक जानकारी दौड़ का अहतमाम किया गया। बांडीपुरा पुलिस ने भी मनुष्यात मुखालिफ अभियान के तहत कई स्कूलों में जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया। इसी तरह के प्रोग्राम जिला शोपियां में भी मुनक्किद किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंतखाबात में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन के तनाजुर में कहा है कि आने वाले पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात में बासलाहियत और तालीम याफ्ता खवातीन को आगे लाया जाना चाहिए ताकि वो अवाम की बेहतर नुमाइंदगी कर सकें। यह बात उन्होंने आज श्रीनगर में पार्टी की खवातीन विंग के एक इजलास की सदारत के दौरान कही। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने आज जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले का दौरा करके वहां लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात पूरा करने के लिए उन्हें मुतलका हुक्काम के नोटिस में लाया जाएगा। पार्टी के कई दीगर लीडरान भी उनके हमराह थे। बुलंद पाए वली हजरत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का 659वां उर्स 23 मई शनिचरवार को अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। उर्स के सिलसिले में खतमातुल मुअज्जमात और दुरूद अज़कार की सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के तारीखी खानकाह मोहल्ला में मुनक्किद होगी। इस रोज नमाज जोहर से कबल मीरवाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी सीरत औलिया बयान करेंगे। शमूलियाती कारखानादारी और स्टार्टअप इंडिया को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने के लिए सनअत और हिरफत की मरकजी वजारत के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड शोबे और जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के मुश्तरक एहतमाम से बारामुल्ला में तेजस मुहिम के तहत एक वर्कशॉप मुनाकिद हुआ। इस वर्कशॉप में डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला सईद फखरुद्दीन हामिद के अलावा कई दीगर जिला अफसरान ने शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद नौजवानों को कारखानादारी की जानिब रागिब करना था। शुमाली रेलवेज के जम्मू डिवीजन ने रेल खिदमात में मजीद बेहतरी लाने के लिए जम्मू रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में अपनी नौवियत का पहला कॉन्फ्रेंस हॉल तामीर किया है। इस हॉल का इफ्तिताह आज डिवीजनल रेलवे मैनेजर जम्मू विवेक कुमार ने किया। इस मौके पर विवेक कुमार ने कहा

0: इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीर में नशर होगा। खुदा हाफिज।
1: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं एजाजा अख्तर। आज 21 मई को पूरे मुल्क में इंसदाद दहशत गर्दी का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन भारत के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की बरसी के मौके पर मनाया जाता है, जो 1991 में एक दहशत गर्दाना हमले में जान बहक हुए थे। ये दिन हमें न सिर्फ एक अलमनाक कौमी सानहे की याद दिलाता है, बल्कि उस खतरे की भी निशानदेही करता है जो दहशत गर्दी इंसानियत, अमन और जमहूरी इकदार के लिए पैदा करती है। दहशत गर्दी आज एक आलमी चैलेंज की सूरत इख्तियार कर चुकी है। दुनिया के मुख्तलिफ खत्तों की तरह बरसगीर और बिलखसूस कश्मीर भी इसके असरात से मुतासिर रहा है। तशद्दुद और खौफ की फजा ने मुआशरती ढांचे को कमजोर किया, इदारों को नुकसान पहुँचाया और अवामी एतिमाद को मुतासिर किया है। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा नुकसान आम इंसान, समाजी हम आहंगी और मईशत को उठाना पड़ा है। दहशत गर्दी का न कोई मजहब होता है, न कौमियत और न ही कोई इखलाकी जवाब। एक महजब मुआशरे में दहशत, खूनरेजी और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकती। तशद्दुद ख्वाह किसी भी फरीक की जानिब से हो, वो तनाजे को मजीद पेचीदा बनाता है और इंसानी, समाजी और इक्तिसादी वसाइल को तबाह करता है। हिंदुस्तान एक आईनी जमहूरियत है, जहां सियासी और समाजी मसाइल के हल के लिए आईनी और जमहूरी रास्ते मौजूद हैं। मसाइल का हल मकालमे, कानून और जमहूरी इदारों के जरिए ही मुमकिन है। यही रास्ता देरपा अमन, इंसाफ और इस्तेहकाम की जमानत बन सकता है। इंसदादे दहशतगर्दी का दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि शिद्दत पसंदी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे की मुश्तरक जिम्मेदारी है। आज जब कौम राजीव गांधी को याद कर रही है, तो ये दिन हम सबको इस अहद की दावत देता है कि नफरत के बजाय रवादारी, तशद्दुद के बजाय मकालमे को फरोग दिया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ असल कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब इंसानियत, इंसाफ और अमन को इज्तिमाई तरजीह बनाया जाए। तबसरा खत्म हुआ, शब खैर।
2: ngaje akashvani lene shunjiktain sanichutsot gyachaduk kaseta pomoguni dikrim pome jiksten sanches la pulen dikrim pulkan gun dechenang motang chikme diangdol dikrim e kodik satkan serim chorol

0: jua pulkan inang zinga e pulchen yale tena zokla fox light tena flash light gun tangye sambe na tongpa ngabya thal ria ngabya ngap chu jik thal janga ta da sa gap tu yale ta te changma nga ta nyampo sirka nyampo kher te nga ta ri semcha nika ka u nge malo ta pikshik khona digmitik charuk te un selches chik tena ama guna ta pikshik ha go chuk te ई चाखानंग देलपे रालुक शलचुंग तांचे त्यों नगता गोवा खेरचे से सिरका उन चेल देमो दुख जरकान बोते लाजगुल जिक चुन चुन रिशुल ते नगता हागो चुकते नुकले ते भी नंग नंग खाचान बुंगे दक्षा मुनला गोजुक चोकान चोकला टॉप डाउन माचो आ बोटम आपे प्रोस चुचे से मी खुरंग न्यापो दुख से खुंग न्यापो स्पेरा जलचा देमो चुते साल ते स्टंगल बार्दो न्यान ना ते नगता नगा दिम्बा नंगले इजुक शिक थाप्स रिक चोक सिक्ते स्कंगल बार्डो ना बिंदु काउ न्ये संबे ना थोरे ओ तुगु निका लाजगुल गुन यगर जुंग युटुल ना नता निका रांस्क्यों चोक्स पा युते नुक माने सुजी ओ जुआ शुलिन साम ना तेने माने मिडिक चेशिक मिरुग याले तेना संबाजी हिसाबी का ई लाजगुल गुन शुल के नाई
1: कसा जु ता ई नता पुमु नि डिग्रीम छना न्यम पो तो ठोस्तु गोश खचन छरो न जुदा संगेरा मुला जदर निजे अमाली गुन न्यम पो जोंदर सलचे से छर्जी या टाडिक जाते योत मुल तो न शिकत पसन गेना कजु शिमुन इवन न को निजे कजु कजु जोंदर खोन ला सलन न जु ता कल्तस नता जोंदर जिक साल ते तिन नता चलक चिक डुप चोक डुप ते तिन न तिन ते ओ निजे छोंसे न सा गुन कजु दिक जाते चिमल
0: न युम माल द मु या लंगिना इना छोंमे सं खचन चोस्ते ई प्रोजेक्ट पो दक्सा गाजे रेंजलैंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो नुगेले ई प्रोजेक्ट पिनांग ने संगमे संगेना खाक चिक चिक आमा गुना ट्रेनिंग तांचेस पोले पोमो गुना ट्रेनिंग तांचेस पो इन याले ट्रेनिंग इना गाता शाल थाचेस थाक थाचेस इनो पता गाता लदाक सेस का दिना जुना थाक थाचेस ई ट्रेनिंग बो इजुक शिक संबाज खुते गाता ए तांस थेन पिन तेवे नंग ने योंगो जिक स्पेलिंग याना माने रेंजलैंड बिकम खुरा चप लेमो चुस्ते असर चाचेस दुग चुस्ते याले ता इना संगमे संग खाकचान चुस्ते चांगता आछा चिक युल चू चुक्स लाई ना ट्रेनिंग साल पिन दंग बुतकानी लुंग इसी ना ई भी ना कजुक से पोमो गुन साल पिन जू ना नतांग युल ने खोल ला मान पा ई आमा गुन ई पोमो गुन चांगता ना दिम्बा ना चांग बतकान खुरांग चोस ने इनो खेले इना खाकचान चुस्ते ते वो जुक चुस पिन घूमे का खुंग यंपो सों ते नतांग जलचत जदा चिक इना स्पेरा जिक ते वो हागो ट्रेनिंग तंग का दमंग पो योंस तो ते जो आं ट्रेनिंग आं गैसपांस साल तो साके का यूंग ट्रेनिंग साल कंजिक माने मांग तो पहले ताते भी ना स्पेरा जिक यूंगो चिक पे का पेरा बो मलुसा यूंगो उस समय पे एक शियांग कुंपा चिक निश गुआ सुनते ताते भी ना संबा चिक चिक स्पेरा चिक चिंग आता है वो तो तंग चिक चंग बत का नहीं आमा गुना चंग में संस कंगल बर दो बो आता है यूंगो बो न्याम पो आता है स्पोस पा बोले सुनाले तेवे ना इना खचन चोस्ते गाता है का बे मुलरोक्स पो चांगता है साल तेन तेवे स्पेरा चिक चिक साल पो चोस्ते मुल क्या ले चीज चिक थक्चा चिक ने ना तंग उम्मे स्पेरा वो योंगो सिंजे तेले ते उम्मे ने सो चोस्ते योंगो सिंजे कान बो खचन चोस्ते मुल क्या है का बे ना विजनिंग जर का ने शुगु बो का बो डुप्ते हो तेवे ना आमा गुनी से योंगो सिंज पोमो गुनी से योंगो सिंज जैसे क्या दक्षे ट्रेनी ना ता ट्रेनी ना चिक छा न्या पो तेने गाता आमा गुना गुमा लनपो चिक सोंग नी सोंग चिक गुमे का तमने अमा उन लांस ते सोंग ले मने गा जांग यांचे मिराव देते तांगा तांग युनसान उन पता चो यां पोते ओ स्पेरा जिक बिंगतों तुंग ला ट्रेनिंग तांग कांचिक तांगे सोसमे मिंग बोमिनेन ओ चो लमंग पो तांग कान गुनी हप्ता रिक चो रिक जाग दुनबारी ट्रेनिंग रिक चो रिक ना तांग जोंदा रिक चो रिक आका तांग स्पसांग ते उन का सेंबास की पुमा ने मानोस तो गयाले चिक पता को जाग पोल दुनी ना मीजी की ची लोप सिंते उन आता संबा स्केचे नो ते ना हिसा दिका ngaji testing ne khonga spera tangs te ngejarang una i chalak de gang ngaji khons te tang chen tene trainer ngejarang yulai khong chen yua nyapo tene there mere jik ama chunga ri chori yul chere gun na ni shuri chori te bo thacha chung king khong ana thu sin de te ta te mina thu sang nyapo gome lo bo khurang ni stong ni shur sab ji na chilo chik tong gyan ang gup chu ko gya chok sik ama thu sle gome lo na ताते ना धारे रे रे चोर गाय ट्रेनिंग साल पे नियाले युल संगमे ना तांगा तांग सोकार अंकुंग अंकुंग जरकान युल गुना तांगे संबे ना दक्षा सपे युजुक पंग माले बतुक टंपो जुना ते का ट्रेनिंग साल तेनो हनले आंगा तां पुंगुक बुक शादो जरकान युल गुना साल ते नियाले तेने ई कने टुकला फुलाक ते का साल तेना चोला करग्याम मुनि याक विलेज कोनी चोचेन मोलानो ते जगा गुने का छा चिक चलाक रे खा गोचे मना तेने जार रे रे ट्रेनिंग बुतांग स्तेंगा तां स्तिंग ने छा चिक गाता त्यो हा गुरु चपे शिक खोने ना स्पोस पा चपिक शिकेस ते दुक जरकान जिक तेने स्पोस पा बुस के ना मीना ची योंग दुक जेना ईस्टिंग ने चीचो चेन देर कान मुमिजी ना संबास के पाले ते छोरवा यों दुकी अच्छा ता ईस्टिंग ने गाता चीचो गेन चेन ओदे संग में संग स्पेरल दे मोगुन ते वो छोर आमा गुना कुरंग स्पोस पास केस ते ग्यागर ला ईकन गाता ngayaram ni chenmo guna thuga yongste juju juste tene konanguni spera salte tene na

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Daksayınşırayın gima palki de selkani lurek sanatats. Naja akashvani leni shunjiktain sani chutsot rgettans garmajip chujanga chadu. Kasita akashvani dillini samachar sandhya news at 9 tang. Urdin anat sulgun sanatat.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने

0: है कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम

0: और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
2: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शास्त्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि

0: दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
1: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले दो से तीन दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh for tomorrow. And in IPL cricket, match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology, innovation, high precision, defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interest. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीरेआजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खतरखा सप्लाई मौजूद है। मरकज ने इबोला से मुतासर मुल्कों से आने वाले और वहां से गुजरकर आने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। भारत अफ्रीका फोरम समिट मुलतवी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल गर्मी की सख्त सूरत हाल से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और BJP लीडर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद शराकतदार के तौर पर देख रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे पर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि यह दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का दौरा इस बात का मजहर है कि भारत आलमी मंजरनामे पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान 57 अहम माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का वादा शामिल है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर उनकी तौहीन-आमेज बयान के लिए उनकी नुक्ताचीनी की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत और अमरीका फितरी शराकतदार के तौर पर काम कर रहे हैं और कई शोबों में एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी इख्तिरात, इंतहाई दकीक नौयत के दिफा, डिजिटल डाटा मराकज, क्वांटम कंप्यूटिंग और तिब्बी आलात शामिल हैं। नई दिल्ली में अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सालाना लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक्तसादी मफादात के सबब मुस्तहकम हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत आलमी

0: कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद फ्रेमवर्क मुहैया करता है और इसमें आला पैमाना, सलाहियत और मार्केट के मौके शामिल हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के सिलसिले में एमएसएमई के रोल को उजागर किया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने फील्ड अफसरान के साथ नई दिल्ली में आज एक आला सतह की सिक्योरिटी के जायजे से मुतालिक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान ये बात सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में आग लगने के कई वाकयात की इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि इसमें समाज दुश्मन अनासर शामिल थे। वजारत ने बताया कि इन वाकयात को इंतहाई संजीदगी से लिया गया है और रेलवे की तहफुजाती फोर्स पूरी सरगर्मी के साथ इसकी छानबीन कर रही है। टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज को वसत देने और सिक्योरिटी कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। हुकूमत ने आज एक बार फिर यकीन दिलाया है कि भारत में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और एलपीजी की भरपूर सप्लाई है और रिफाइनरीज मांग पूरा करने के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत का इस्तेमाल कर रही हैं। एलपीजी की पैदावार में इजाफा हुआ है और रिफाइनरीज में रोजाना तकरीबन 46 से 47 हजार टन एलपीजी तैयार की जा रही है। नई दिल्ली में मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बैन वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सप्लाई मुस्तहकम है और सभी पेट्रोल पंपों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: रसोई के मकसद के लिए एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम है और पिछले 3 दिन में 1,34,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर फराहम किए गए हैं। सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल ने मुतासिरा मुल्कों से आने वाले या वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए इबोला बीमारी के मुतालिक एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक वो मुसाफिर जिन्होंने ज्यादा खतरे वाले मुल्कों जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और जनूबी सूडान शामिल हैं, इनका सफर किया है और जिन्हें बुखार, सरदर्द, आसाब में जकड़न, बगैर किसी वजह के खून बहने और कह आने और निगलने में परेशानी का सामना है, तो उनसे जोर देकर कहा जाता है कि वो फौरन तिब्बी अमले से रुजू करें। एक रिपोर्ट।
2: हुकूमत ने कहा है कि तस्दीकशुदा इबोला मरीजों या मुश्तबा मरीजों से खून लेने के सबब बराह रास्त रابطे में आए मुसाफिर इमिग्रेशन क्लियरेंस से कबल हवाई अड्डे की सेहत ऑफिसर या हेल्थ डेस्क से फौरन रुजू करें। हुकाम ने मजीद कहा है कि किसी मुसाफिर के अपनी आमद के 21 दिन के अंदर ऐसी किसी बीमारी के आसार पैदा होते हैं तो उसे फौरन तिब्बी मदद तलब करनी चाहिए और अपने पिछले सफर के मुतालिक हिफ्जान सेहत के अहलकारों को खबर देनी चाहिए। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो सेहत से मुतालिक बैन अल-अक़वामी ज़ाब्तों पर अमल आवरी और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की गरज से सेहत जाँच और अवामी सेहत के इकदाम के सिलसिले में ताउन करें। दिल्ली से दीपेंद्र और अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: आलमी सेहत तंजीम का कहना है कि 21 मई तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और युगांडा में इबोला की एक अनोखी किस्म बुंदी बोगियों से मुतालिक 650 मुश्तबा मामलात का पता चला है जिसमें 144 अमवात भी शामिल हैं। इतवार को आलमी सेहत तंजीम ने इसे बैन अल-अक़वामी तशवीश की एक अवामी सेहत इमरजेंसी करार दिया था, अलबत्ता उसने कहा था कि ये वबाई सतह पर नहीं है। सेहत की इस सूरत हाल के पेश नज़र भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होना थे मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल आज ही भारतीय हुकूमत ने अफ्रीका में रहने वाले, सफर पर जाने वाले या अफ्रीकी मुल्कों से वापस आने वाले इबोला वायरस से मुतासर लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। अब तक भारत में किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि भारत ने ज़रई पैदावार में इजाफा करके गजा की फराहमी को यकीनी बनाने के अमल को मुस्तहकम करने और लाखों की किसानों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाकर दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश किया है। रोम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गजा और ज़रई तंजीम FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजे जाने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि ये एजाज नए भारत के बढ़ते हुए वकार की एक अलामत है।
3: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास

0: ये ऐसे उन्हें कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: चौथा भारत अफ्रीका फोरम समिट, जो इस माह की 28 तारीख से 31 तारीख तक नई दिल्ली में मुनक्कद होना था, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सेहत की सूरत हाल के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि भारत अफ्रीकी यूनियन के सदर नशीं और अफ्रीकी यूनियन कमीशन के दरमियान मुशावरत की गई, जिसमें समिट और उससे वाबस्ता सरगर्मियों को मुनक्कद करने पर गौर खोज किया गया, जिसमें अफ्रीकी लीडरों और तरफेन की मुकम्मल शराकतदारी और शमूलियत को यकीनी बनाने की अहमियत का एतराफ़ किया गया। इस सलाह मशवरे के बाद दोनों फरीकैन ने इस बात से इत्तेफाक किया कि चौथा भारत अफ्रीकी फोरम समिट बाद की किसी तारीख पर तलब करना ज्यादा मुनासिब होगा। समिट और इससे वाबस्ता मीटिंगों की नई तारीख बाहमी मुशावरत से तय की जाएगी और जल्द ही इस सिलसिले में ऐलान किया जाएगा। भारत ने अफ्रीका के अवाम और वहां की सरकारों के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया है और कहा है कि वो अफ्रीका की CDC की क्यादत वाली कोशिशों में तआवुन के लिए तैयार है, जिनका मकसद सेहत की मौजूदा सूरत हाल से निमटना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। भारत ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों, खुसूसन सरहद पार की दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुत्तहिदा आलमी कोशिशों पर जोर दिया है। नई दिल्ली में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए मगरबी खित्तों के खारिजी उमूर की वजारत के सेक्रेटरी CB George ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने और उनकी हिमायत करने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से तश्वीश का इजहार करते हुए MEA के सेक्रेटरी ने दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत करने और उनको पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया है। ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने दहशतगर्दी की माली एयानत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से उभरती हुई टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए मजबूत बैन अलाक़वामी तआवुन की अपील की। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में नस्ल कुशी वाले पाकिस्तान के तवील दागदार रिकॉर्ड को उजागर किया है। मुसल्ला महाजाराई में आम शहरियों के तहफ्फुज़ के बारे में सलामती कौंसिल के सालाना खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदा हरीश प्रवर्तने ने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के गैर इंसानी तर्ज अमल से उसकी सरहदों और इससे बाहर भी तशद्दुद की हरकतों के जरिए दाखली नाकामियों का रुख बाहर की जानिब मोड़ने की उसकी कोशिशों की अक्कासी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सितम ज़रीफ़ी की बात है कि पाकिस्तान ने, जिसका नस्ल कुशी की हरकतों का तवील दागदार रिकॉर्ड रहा है, उन मामलों का हवाला देने की कोशिश की है जो कुल्ली तौर पर भारत के दाखली मामलों हैं। जनाब हरीश ने ये रायजनी उस वक्त की जब पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बहस के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के स्कूल तलबा के एक वफद ने आज उपराष्ट्रपति भवन में नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। नायब सदर जमहूरिया ने सरकारी स्कूलों के गरीब और पसमानदा तबके के तलबा को एक तालीमी दौरे पर दिल्ली लाने के कदम को सराहते हुए कहा कि इस तरह के दौरों से तलबा क्लासरूम से हटकर काफ़ी कुछ सीखेंगे और उनके नज़रियात में वसत पैदा होगी। नायब सदर जमहूरिया ने अपनी बातचीत में तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने मौजूदा माली हालात की वजह से हिम्मत न हारे। उन्होंने ये भी कहा कि तालीम से वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के अहल बनेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 16वीं आसाम कानून साज असेंबली का स्पीकर मंतखब होने पर रंजीत कुमार दास को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जनाब दास का कानून साजी का वसी तजर्बा और अवामी खिदमत के लिए गैर मुतजल्जल अज़्म असेंबली के वक़ार और जमहूरी रिवायात को मजबूत करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए शदीद से शदीद तरीन गर्म लहर की सूरत हाल के बारे में रेड अलर्ट किया है। इस तरह की सूरत हाल इस हफ्ते जारी रहेगी। इसी तरह के हालात दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और साहिली आंध्र प्रदेश में भी रहने का इम्कान है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से अख्तितामी हफ्ता तक गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है।

0: भारतीय महकमे मौसमियात ने मगरबी बंगाल और उड़ीसा में आइंदा 2 से 3 दिन तक गर्म और मरतूब मौसम रहने की भी पेशगोई की है। आईएमडी ने कहा है कि सब हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इतवार तक शदीद से शदीद तरीन बारिश होने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल तक गरज चमक और झालाबारी के साथ तूफान की पेशगोई की है। इसी दौरान आईएमडी ने अंडमान निकोबार जजायर, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, साहिली कर्नाटक, कोंकण, गोवा और शिमाल मशरक के खत्ते में आइंदा 2 दिनों तक बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के बारे में भी पेशगोई की है। ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइस ने आज मुंबई में कौमी स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और घंटी बजाने की रिवायती तकरीब में शिरकत की। ये प्रोग्राम में कलीदी खुतबा देते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि कुब्रुस भारत और यूरोप के दरमियान एक कुदरती राहदारी है, नीज वो वसी तर मशरकी बहरे अरब और मशरक वस्ता के दरमियान एक राहदारी है जो उमंग, इख्तरा और मुस्तकबिल पर मरकूज खाके के साथ सियासी और इक्तसादी इस्तेहकाम फराहम करती है। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत कल अच्छी कारकर्दगी वाली निगहदाश्त मईशत तख्लीक देने के एक वर्चुअल प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। वजारत ने बताया कि इस तकरीब की अहम सरगर्मी मुअम्मर शहरियों के लिए जीवन ऐप और मुअम्मर अफराद की निगहदाश्त वाले करने वालों के बारे में जानकारी के शतायु डैशबोर्ड का आगाज करेगी। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी एक मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की तरफ से सुदर्शन ने 53 गेंदों में शानदार 84 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फवाइद की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजामों को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खातिर खास सप्लाई मौजूद है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ngaje akashwani lene shwenjik tain chani chotot gudang phe chado kaseta potpe dikram kangri nurpo sanches la phulen dikram phulkan gon choki lamutang sonam choki dikram e kodik zat kan lobsang nam gel
3: phe yalo ni don chi gya ngap jung asum phenda shiwe che nga da chilo ni don ni sa chu da wa nga we che ni shi za ji re sa phe phe phe ge le rim khang ri nu bu yang sin shi yu be sen sin ba na ba yong la cham ji de shi le da kung gam sang tha rin ge le rim phe phe shen ge thang ji cho ge gen chi she be ju shi tho la mix se ge ani ko gu mu thun chu la thin de shi yu be kung la de shi le le rim gom ha chu gom la ya nge le ro cho ge la mu la ne ngang ba da ru be she be ju shi tho la sung nang gyo
4: ani thong ma di la chang ma la de shi le Tarini ki junshi di ani sensei pa pama indro, thana shi, pu indro, changma la ani ngi mixe che che, ani dhumjik purde. Ani dhumjik ki junshi di ani ngangba da rupi yin. Ani nima nima ani lungba shi nang la, ani zingbu shi yota. Ani zingbu di nang la khari shuko lana ngangba pumu nyi da ani rupi zi khunzu shu che. Ani khunzu ki chowa ki di khari la ten chungo lana, ani nganzu yarki chawa di la teni, ani shuki yota. अनि लो नि लो छवा दि पबे न्युवा छे नजुकी नामसी गुतो ने खरि ने गुतो छिन दि दु छवा पबे न्युवा छिन जे नि खले खले जिंगु दि कमेला छुजु लेप छे अनि निमा छि छुजु खले छवा ल ना ngangba khuni अनि छुना थे नेदा मेग्यो जिंदे छार थे थुएगी अनि छुना गि थो दिनजु या अनि बुर्दु थ्यो छे खांगला थ्यो छे अनि खुजु रुबेल इन्दो थाना सिंगंग बाइन रो ता खुजु गि छवा दे न्युवा बब्दु अन तेतबे मेगो की ने दांसि छायु रुवा छायु दु माला अन निमासि ने गंगबो फमुनि दे खोरा इजे केजेसि छुये छेसे तांगजो तांगि देल थेवै ना नि छुनि निमाने निमा न्युंदु रुदु छेना गनि या लुंगबा छेंबासिला नि बे छिने मानसि नि देल नि थुसा मारे छे खोरा इजे अन फेंजु छुये छे बता
3: रुबेल की नवर थे रुबेल की ना गांव फोम की दुई लोन से खाला ना गांजो नहीं था